0: प्रोलो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलुदुत्कु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु

0: পর প্রিন্ট মুহূর্ত রকম ভক্ত বাড়ি সাধক নগর একিম গড়ের সম্বন্ধে সূচনা আদরণীয় শ্রী আগ্রহী মহানুভাবর তপাইলে আপনো সবারী সাধনকে বাস্তব রূপমা বুঝাউনু পর্ণ সবারী কর নবকরণ বস্তুর লগায়ত অন্য কর সম্বন্ধে বিতরণ হেঁকা লাগে সম্বন্ধিত ইয়াতায়াত কার্যালয় গর কর প্রিন্ট মান্য ব্যাঙ্ক ভোচর গর্ণ অগি সবারী কর তথা বস্তুর একিম গর্ণ তথা কর বুঝায় পছি প্রাপ্ত হুয়ে বিমা আপনি বুঝাইকে করকো রকম আপনি সবারী নম্বর একিম গর্ণ হুম এসেই সূচনা মারফত অনুরোধ গরিছ
1: উত্তর প্রদেশ সরকার আন্তরিক মামলা তথা কানুন মন্ত্রণালয় ফিরাত
2: ঠট্টাই মারো বৈশা জন লাগো জানাই বাঁচা খির পর্খলি আউলা
3: হইন এ কান্ছা গীত গাউদে কোথায় নি
4: জাপানিজ ভাষা পড়ে জাপান যাও কি ভনেক দিদি গাউমা জাপানিজ ভাষা পড়াই নহুনে রয়েছ
3: খোজ্দি হিঁড়ে সংসার বেদিন্ছ রে নি বরু কোন ঠাউমা রাম্রো পড়াই হুছ ভনের চাইকো হো ভনে ম বতাইদিন হে
4: मेरो त नचाहिँ यही हो जापान जाने कुन इन्स्टिच्युटमा राम्रो पढाइ हुन्छ अनि के प्रोसेस गर्नुपर्छ थाहा नपाएर तनावमा पो छु हौ
3: अब चिन्ता नमान कान्छ ओरियन बिजनेस ग्लोबल इन्स्टिच्युट सावन चेकमा जापानी संस्था पढ्ने अनि जापान जाने
4: होइन त्यो इन्स्टिच्युटमा चाहिँ किन पढ्ने त अरू छैन त पढ्ने ठाउँ
3: ओरियन बिजनेस ग्लोबल इन्स्टिच्युटमा अरूको भन्दा छुट्टै विशेषता छ यहाँ जापानबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका तथा जापानी शिक्षकहरूबाट भाषा कक्षा पढाउनुको साथै साप्ताहिक नियमित टेस्ट कक्षा छुट्टीमा पनि एसेप्ट गरिने र बिना झन्झट जापान जान प्रशिक्षण समेत गरिन्छ त्यसका साथै कम मार्क्स ल्याएका वा कम जीपी ल्याएका ब्याकलागेर पास भएकाहरूले पनि जापानमा पढ्न जान अप्लाई गर्नु र जापानको टोकियो ओसाका नागोया फुकुओका लगायतका शहरमा जाने सुविधा पनि उपलब्ध छ
4: सबै कुराको सुविधा त थाहा भयो दिदी कक्षा संचालन कति छिटो हुँदैछ
3: सुन कान्छा यस इन्स्टिच्युटमा जापानिज भाषा कक्षा बिहान छ बजीदेखि बेलुकी पाँच बजीसम्म नियमित भइरहेका छन् त्यसैले आफू चाहिँ सुरक्षित गरिहाले कान्छा
4: ल दिदी म त हिँड्छु ओरियन बिजनेस ग्लोबल इन्स्टिच्युटमा तपाईँहरू पनि आउनुहोस् है
5: हजुर सबैको विश्वासी र भरपर्दो जापानिज भाषा पढाउने इन्स्टिच्युट ओरियन बिजनेस ग्लोबल इन्स्टिच्युट चावल केएल टावर छैटौं तला काठमाडौँ सम्पर्क
3: प्रोपाइटर
5: 98557979 र 01592216 वेबसाइट www.obgi.edu.np ओरियन बिजनेस ग्लोबल इन्स्टिच्युट ओबीजीआई एजुकेशन कन्सल्टेन्सी नेपाल चारहन चुच्चेपाटी काठमाडौँ
6: आज मेरो जन्मदिन हो याद त छ नि
7: संसारकी सबैभन्दा राम्री मेरी प्रिय मायालु हजुरको जन्मदिन मैले कसरी बनाउँदा र ल आँखा बन्द गर त
6: त्यसै जिस्किनुहुन्छ हजुर पनि ल आँखा बन्द गरे
7: ल अब आँखा खोल त
6: कस्तो राम्रो उठी अनि मङ्गलसूत्र पनि ओहो मैले त सोचेकै थिएन एकैपटक यति धेरै उपहार पाउँछु भन्ने त मेरो प्यारो बुढो कताबाट ल्याउनु भयो यस्तो आकर्षक डिजाइनका औँठी र मङ्गलसूत्र अरू कहाँबाट हुनु र हजुर विधान सुनसादी पसलबाट हो नि विधान सुनसादी उद्योगमा नयाँ तथा आधुनिक डिजाइनका सुनसादीका आकर्षक गहनाहरू पाउनका साथै अर्डर अनुसारका गहनाहरू तपाईँले खोजे र भनेकै समयभित्र बनाइन्छ मन्दिरमा चढाउने भेटी प्रचलित गहना ढुङ्गी बुलाकी मालदारी तिलहरी लगायतका गरगहना नेटको भावमा बनाइन्छ राशि अनुसारको पत्थर पनि पाइन्छ प्रोपाइटर विधान रहताल सम्पर्क नम्बर 97 42 28 40 56 र 98 67 53 0 620 ग्राहकको सन्तुष्टि नै हाम्रो लक्ष्य हो विधान सुनसादी उद्योग सोनी भुतकुण्ड नगरपालिका कुडा नम्बर 5 सले

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड को मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब उखलझुला को मिलन क्षेत्र।
2: हुंडा का विशेषता
3: जापानीज ऊर्जा प्रणाली उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भरपर्दो
3: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लॉन्च भइरहेको
3: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
2: हाम्रा सेवाहरू
3: उखलढुङ्गा र खोटाङको दिक्कल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित हुंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जुनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाउनु का साथै सर्भिसिङ सेवा
3: एक्सचेन्ज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्भिस सेवा निशुल्क दिइने
2: अनलाइन बाट बुकिङ गरे भुक्तान गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ।
3: उखलढुङ्गाको लागि आधिकारिक विक्रेता होट मल्टीपर्पज सर्भिस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुजाई उखलढुङ्गा।
2: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852988002222 र 9842880300।

बिस्टर गांव को धान को बाली के ले खायो खायो बाखरी ले जीव खायो पहले जीव।

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अदलित ग्रही महानुभाव यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रभावी सेवा प्राप्ति को सहजीकरण का नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष मृत्युक सेवा प्राप्त कर सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष का संपर्क राख अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कति को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई गुनासो आईन गुनासो कने अधिकार कार्यालय प्रमुख सीधे संपर्क राख सकने
1: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराजमान
0: यदि तपाईको बस्नामा जन्मसाथ पोटारा घुमेको क्लब फुट समस्या छ भने उपचारको लागि अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा वडा स्थापना केन्द्र एसआरडीसी काफ्री बनिता नगरपालिका एघार र प्रादेशिक कार्यालय इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 सुनसरीमा तुरन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्ता समस्या भएमा व्हाट्सएपबाट फोटो पठाएर सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ भने साथै विपन्न गरीब परिवारका लागि उपचारमा विशेष छुट गरिनेछ। थप जानकारी का लगी संपर्क नंबर 98 52 55 78 अंक 9 8 5 2 0 5 5 7 6 8

0: प्रोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम
2: चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुर्कुन्डा नगरपालिका पांच सोलु खुम्बू

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलुदुत्कु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु

0: रेडियो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: Soundcheck. Sony FM. It's studio time.
2: It's 6 p.m. Saturday, 12
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोनू दुदकुम नगर पालिका 5 सोनू कुंभू
3: मेरा जीवन

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अदली सेवा ग्रहण महानुभावर यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रभावी सेवा प्राप्ति को सहजीकरण को नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राखने अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कति को प्रलोभन नगरी आपू सेवा लिख हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कने ग्रास सुनी अधिकार कार्यालय प्रमुख सीधे संपर्क सकने
1: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन FM 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन FM 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो अभियान
3: Studio time.
4: It's 7 p.m. Start the post-start video.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलुदूत को नगर पालिका 5 सोलुखुम्बू

0: Chair. Sonia Fan, in studio time.
1: It's 9 PM, Ratko Novadu. टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलू दुदकुंड नगर पालिक पांच सोलू खुम्बू
2: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सुन्न एफएम सुन्न एफएम मा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न

0: 式の先生をご参考にお待ちください。
1: उपभोक्ता अधिकार को संरक्षण गरौं गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गरी उपभोक्ता को अधिकार को रक्षा गरौं कारोबार में बिल विशोक लिने र दिने गरौं कारोबार पारदर्शी बनाऊ नाफा को उद्देश्य झूठा भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना बनाऊ वस्तु सेवा को मूल्य मात्रा म्यासकी नीति गुणस्तर यकीन करी मात्र खरीद बिक्री गरौं वस्तु व सेवा को प्रयोग कुनै हानि नुकसानी भए स्थानीय प्रशासन में उजुरी गरौं वस्तु तथा सेवा को प्रयोग स्थिति पुगे क्षतिपूर्ति मागौ निष्पक्ष तथा तथ्यपूर्वक सूचना पाउने उपभोक्ता अधिकार को रक्षा गरौं भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना को कारण उपभोक्ता ठगी स्थानीय प्रशासन में उजुरी गरौं आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय कोशी प्रदेश द्वारा जनहित में जारी